0: नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी सम्झना महर्जनसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ।
1: आज 2083 साल असोज 27 गते मंगलबार, सन् 2026 अक्टोबर 13 तारीक असोज शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि।
2: काया कैरन का साथमा
1: किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली
2: राष्ट्र कुसान किसान
1: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स।
0: काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट।
1: बूढ़ी गंडकी को बाढ़ी ले 200 घर बगे, ओत खोज्दै प्रभावित 5000 घर धुरी अंधकार में, चुम उपत्यका को पदयात्रा स्थगित।
0: इस वर्ष मुख्य चाड़ पर्व में अत्यावश्यक वस्तु को भाव अचाक्ली बढ़ा, उपभोक्ता मर्का में वर्षभर भित्रने रेमिट्यान्स को झंडे 25% भदौदेखि कार्तिक सम्म भित्रने गरेको तथ्यांक।
1: प्रस्तावित राजदूत को सुनवाई शुरू, सुनार विरूद्ध महिला हिंसा र थापा विरूद्ध पीआर को आरोप।
0: भारत को जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने, प्रदर्शन का लागि 3 नया ठाउँ तोकिए।
1: विश्वकप क्रिकेट लीग 2 में नेपालले आज ओमान संग खेल्दै।

यो चाड़ पर्व में यूरो पेंट प्रस्तुत करद रंगीन घर बरसिं उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट को खरीद में पाने लकी ड्र कूपन अनेस इन्वर्टर एसी एक टन डबल डोर फ्रीज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाने एक जोड़ी को लगी बाली टूर यूरो पेंट घर मात्र होना रंगाउनुहोस् सपना बनी।

0: Liponia.
1: Extreme energy drink.
2: Radio Bheri FM.
3: ममनू मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ.
4: What is wrong with you?
5: नहीं रहना मुझे घर पे, नहीं रहना आज तेरे नाल.

जेब इन पारे आखिर मेरे गाँव की चेनी कोई ना ए जेब इन पारे आखिर मेरे गाँव की चेनी बुढ़ी कन्या बस बने।

0: Mangal Deep Scent 3-in-1 Perfume Like Fragrance.
1: प्रत्येक वेस्पा वा अप्रिलिया को खरीद मा स्क्रैच मार्फत रु 1,00,000 सम्म को क्याश र ऑनर को X5 प्लेन स्मार्ट वॉच पक्का उपहार नागरिकता को भर मा फाइनेंस र एक्सचेंज सहित को 0% सर्विस चार्ज आजे आउनु होस श्रीनाथ सप्लायर्स मा लोकेशन जुमला रोड स्वा होटल को छेउ मा सुर्खेत संपर्क 9801328807 9801328807 दशैं को दक्षिणा तपाईको नजिकै को शोरूम मा
2: दसैं आयो खुशी ल्यायो हायर को खुशी को पल योजना
3: अब हायर रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन एसी वा चेस्ट फ्रीजर खरीद गर्दा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार
2: सिंगल डोर फ्रिज मा ड्राई आयरन डबल डोर मा मिक्सर ग्राइंडर अनि साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर मा फूड प्रोसेसर शॉर्ट उपहार
4: फ्रंट लोड वाशिंग मशीन मा इन्फ्रारेड कुकटप अनि इन्भर्टर एसी मा निशुल्क इन्स्टलेसन सुविधा पनि
2: 0% ब्याज मा किस्ताबन्दी सुविधा पनि छ हायर सँग खुशी को पल सजाऊ हरेक घर हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज